ऐसी सहमती शाम दिए उदिशा में उतुम पिरित सज्जायने कुट बताले पाणदुर गंगुल श्री परम विशुद्धारामाधिपति वैडसिट अपत्वि बताल प्रवचन कीर्ति श्री सरबन्य विशारद पूज्यपाद मिगस्वे सोमरतन स्वामी महान।